0: Res Radio 91.3, a service of Coupa Pala Res Indians. KPRI Pala.
1: शमस ताहम कुपमान निस्मलाह की किताम तमकते मवई कला अमाया या चमाय वच माकी आ चमाय वच मल मुकी नौपिश ना कमी यव अमाया या हे मोय मीवा हे मोय पुकवि हे मोय तू न क्षमाया शमशताह कुपंगा निष्मलाह की किताम तम कथे मवि कला अमाया या चमाय वच माकिया चमाय वच मल मुखी नौ कृष्ण ना कमी।

आया शमशता हमको पुंगा निष्मलाह की केतम हम कथे मवी कला हम आया हम आया चमाय वो चमा की आय चमाय वो चमल मुखी नौ कृष्ण ना कमी।